स्टडी एब्रोड जुनसुके विषय में उच्च शिक्षा का लागि अस्ट्रेलिया यूएसए यूके कैनेडा न्यूजीलैंड हजुर को गंतव्य विश्वासिलो र भरपर्दो शैक्षिक परामर्श केन्द्र बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा संपर्क बीएमडब्ल्यू एजुकेशनल कंसल्टेन्सी पोखरा चार सिद्धार्थ चोक फोन नंबर 0615707636 9856320325 9806535480 साथ ही आईएस र पीजी का कक्षा विशेषज्ञ टोली र गुणस्तरीय तालीम का साथ प्रदान गरिन्छ।

0: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज
1: सुन्न मन लायो
2: कार्यक्रम लोक सौतारी लोक दोहोरी भाकाहरुको एउटै संगम कार्यक्रम लोक सौतारी बिहान 9:15 देखि 10 बजे सम्म मात्र रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज मा।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 0557 मलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

तामा, पितल, स्टील, कांच, प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856120046 9852010504 साथ ही कुकुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: श्रावण महिनाको प्रत्येक सोमबार गाईघाट पोखरादेखि श्री केदारेश्वर मणि बोलबम धामसम्म हुने बोलबम जलयात्रामा सहभागी बनौ, अक्षय पुण्य लाभ कमाऊ।
1: जल उठाउने स्थान पोखरा एक गाईघाट बिहान 7 बजे जलार्पण श्री केदारेश्वर महादेव बोलबम धाम लेक साइड पोखरा।
0: अनुरोधक श्री केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रम समिति बोलबम धाम।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705050557 मुसरा 7 चिकन बिरयानी हजुर के सहर पो

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97050 55 0557 मुलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: सफलता स्टूडियो टाइम।

तामा पीतल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध।

0: श्रावण महिनाको प्रत्येक सोमबार गाईघाट पोखरादेखि श्री केदारेश्वर मणि बोलबम धामसम्म हुने बोलबम जल यात्रामा सहभागी बनौ, अक्षय पुण्य लाभ कमाऊ।
1: जल उठाउने स्थान पोखरा एक गाईघाट बिहान 7 बजे जलार्पण श्री केदारेश्वर महादेव बोलबम धाम लेक साइड पोखरा।
0: अनुरोधक श्री केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रम समिति बोलबम धाम।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705505508 9705505507 मुसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड
1: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
2: वेस्ट सल्फर ले आयो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
1: अब सब को लगी वेब सर्फर भर पर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरू वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टीवी सर्भिस
3: कन्ट्याक्ट 0615530500 0615589848
1: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np
4: अब रेडियो प्रस्तुता उद्घोषण कला र नेतृत्व क्षमता वृद्धिका लागि सम्झनुहोस् रेडियो सफलता 103.4 MHz लाई तालिम सञ्चालन भइरहेको छ सम्पर्क 061-452-966 061-455-966 र मोबाइल नम्बर 98460-00851

0: तामा पितल स्टील कांच प्लास्टिक तथा किचन का सामान होलसेल मूल्य में खुद्रा बिक्री करने स्टोर्स नवयुनिक गिफ्ट एंड किचन स्टोर्स पोखरा 50 किलोमीटर प्रोप्राइटर विष्णुदत्त मिश्र संपर्क 9856012046 9852010504 साथ ही कुखुरा को दाना पानी को भाड़ा थोक मूल्य में उपलब्ध छ। यदि तपाई वैदेशिक रोजगारी में जाने मनसाय बनाई रहनु भएको छ भने नागढुंगा पोखरा में रहेको नेशनल एक्सपोर्ट मेनपावर कंसल्टेन्सीलाई सम्झनुहोस्। दुबई कतार साउदी मलेसिया सहित रोमानिया लगायत का यूरोपियन राष्ट्र का विभिन्न कंपनी में वैदेशिक रोजगारी को सुवर्ण अवसर कुक किचन हेल्पर वेटर सिक्युरिटी गार्ड फैक्ट्री वर्कर डेलीवरी बॉय ड्राइवर हाउसकीपिंग हेल्पर क्लीनर लगायत का क्षेत्र में वैदेशिक रोजगार जान चाहनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्। खाना बस्ने को सुविधा सहित मासिक तलब न्यूनतम 40,000 देखि 1,00,000 सम्म सम्पर्क नेशनल एक्सपोर्ट मैनपावर कंसल्टेन्सी प्राइवेट लिमिटेड नागढुंगा पोखरा कास्की फोन नंबर 061553071 98067881234 97050771123 व्हाट्सएप नंबर 98011 77123। श्रावण महीना को प्रत्येक सोमवार गाईघाट पोखरा देखि श्री केदारेश्वर मणि बोलबम धाम सम्म हुने बोलबम जलयात्रा में सहभागी बनौ अक्षय पुण्य लाभ कमाओ।
1: जल उठाउने स्थान पोखरा 1 गाईघाट बिहान 7 बजे जलार्पण श्री केदारेश्वर महादेव बोलबम धाम लेक साइड पोखरा।
0: अनुरोधक श्री केदारेश्वर महादेव मणि सेवा आश्रम समिति बोलबम धाम बैदाम।

0: साथै आधुनिक प्रविधि द्वारा नापतौल गरी किनबेच गरिन्छ।
1: सम्पर्क दीप सुन्चादी दोकान गैरापाटन चार पोखरा प्रोप्राइटर दिपेन्द्र सुनार कान्छा। मोबाइल नम्बर 9852120 9821 27014।
2: नव युनिक गिफ्ट एन्ड किचन स्टोर पोखरा 5 0 किलोमिटर।

0: नमस्कार, हम चौधरी गाली सभी सुनी हुई ले सफलता सुन मिलायो
1: रेडियो सफलता 103.4 मेगाहर्ट्ज
2: सुन मिलायो।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705508 9705508 मुलसरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 9705050508 9705055007 मलसरा तात चिकन बिरयानी पोखरा 8 जालपा रोड।
1: आहा, मेरी बुहारी कति राम्री आकाश को जुन टपक्की टिपेर ल्याएछ मेरो छोराले।
2: यो आकाश को जुन सँगै तारा जस्तै टल्किएका कास्कीकोट ज्वेलर्स का गहनाले सुनमा सुगन्ध थपिएका छन् नि आमा।
1: अनि कहाँ छ छोरा यो पसल?
2: यो त पोखरा 2 बिन्दावासिनी बस पार्कमा छ नि।
3: हजुर, हामी कहाँ दक्ष अनुभवी कालीगढ द्वारा आधुनिक डिजाइन का सुन चाँदी का गरगहना अर्डर अनुसार ग्यारेन्टी को साथ तयार गरिन्छ एवं पुराना गहना साटफेर तथा खरीद बिक्री गरिनुको साथै कम्प्युटर प्रविधि द्वारा गहना नापतोल गरिन्छ।
2: पुर्खौली काम हाम्रो पुर्खाको नाम सुन चाँदी का गरगहना किन्न कास्कीकोट ज्वेलर्स मानै जाउँ।
1: पोखरा 2 बिन्दावासिनी बस पार्क।
2: विशेष ज्यालामा छुट सहित नयाँ डेकोरेशन का साथ अब तपाईहरुकै सेवा।
1: प्रोप्राइटर बलबहादुर सुनार कृष्ण।
2: मोबाइल नम्बर 9846059581
1: 9166175475।
4: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
5: वेस्ट सर्फ ले आयो नया जम्बो कॉम्बो ऑफर अब मात्र 12,000 में 1 वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में 2 वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
4: अब सबैको लागि वेब सर्फर भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंट्रानेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवाहरू कुलागी वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
5: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615589848
4: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np।

अनलाइन अर्डर का लागि सम्पर्क 97050 50508 97055 55 07 मुन्सरा 7 चिकन बिरयानी हजुरकै सहर पोखरा।

0: विगत को 20 वर्ष देखि हजुर सेवा में समर्पित
1: वेस्ट सल्फर ने ल्यायो नया जम्बो कम्बो अफर अब मात्र 12,000 में एक वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस 19,500 में दुई वर्ष को टीवी प्लस इंटरनेट सर्विस
0: अब सब को लागि वेब सर्फर घर पर दो विश्वासिलो हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट र टीवी सर्विस देश को पूर्व देखि पश्चिम सम्म फैलिएको हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट आईपीटीवी डिजिटल टीवी कर्पोरेट इंटरनेट इंटरनेट र डेटा सेंटर सर्विस आदि सेवा वेब सर्फर नेपाल अरु भन्दा फरक सबै भन्दा विश्वसनीय नेपाल भरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस
1: कन्ट्याक्ट 0615530050 0615889848
0: फर मोर डिटेल्स विजिट www.websurfer.com.np